0: हाँ तो मैं क्या कह रहा था?
1: हाँ तो
0: मैं कुछ कह रहा था,
1: बोलो ना, भूल गए?
0: अरे हाँ भूल गया। चलो चलो घर चले
2: चलें दे।

मारो, कस्टम बस्टम कचर बचर सबको गोली मारो, दिल वालों के इस मेले में मौज मना लो यारो, कस्टम बस्टम कचर बचर सबको गोली मारो, मुक्त मिले जब दिल की बुटिया फिर तकनीक खेलो मजा ले लो। घुमा रुम्मा घुमा रुम्मा घुमा रुम्मा गेलो ओ गेलो ओ गेलो ओ घुमा रुम्मा घुमा रुम्मा घुमा रुम्मा गेलो ओ गेलो।

तो उनके प्यारों सर पर बांधो तेरे, दुनिया तुमसे खेल रही है, तुम दुनिया से खेलो, मजा ले लो हाँ। गुम्मा रुम्मा गुम्मा रुम्मा गुम्मा रुम्मा खेलो और खेलो और खेलो और गुम्मा रुम्मा गुम्मा रुम्मा गुम्मा रुम्मा खेलो और खेलो और खेलो और कल की बातें कल पे छोड़ो, आज मजा ले लो भाई। गुम्मा रुम्मा गुम्मा रुम्मा गुम्मा रुम्मा खेलो।

घर में आज नहीं है आटा, खूब चलेगा बाटा, कह गए बेटा जानी वाकर। अरे वाह जाने वाकर, वाह वाह।

0: pak ik juist de verkeerde, want het is niet de bedoeling dat ik de jaren 80 nu erbij ga halen. Dus laat ik nu echt wel gaan naar mijn 90s song.
1: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
2: हाँ, एक लड़की, बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी। लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
1: उसे बताया क्यों नहीं?
2: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना। जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो, वहां भी दिल कहने से डरता है। और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं? वो किसी और को चाहती है, बहुत चाहती है।

ये उजाला रेडियो है, सुनने वालों हमारा हिस्सा का प्रोग्राम में आप लोगों को स्वागत करते हुए आप गीत को सुने फिल्म अनारी से।

तुझे बिठा के बंद कर लूंगी मैं अपनी आंखें और पूजा करूंगी तेरी। लता जी की आवाज, फिल्म का नाम फकीरा। उजाला रेडियो पर आप सुने।

फिर याद किया मोहम्मद रफ़ी लता जी एंड मुकेश जी से। आप इस गीत को सुने, फिल्म का नाम भी दिल ने फिर याद किया और यह है उजाला रेडियो।

दिल से दिल की दूर बांधे। फिल्म छाया और गीत के गाने वाले लता एंड मुकेश जी। उजाला रेडियो है सुनने वालों, कोई भी जानकारी इंफॉर्मेशन चाहिए तो दफ्तर के समय आप तार करें, और आप भी हम लोगों के वेबसाइट पर देख सकते हैं www.ujala.nl।

से मिला के दिल प्यार कीजिए। एक पुराना सुना सुने लता जी की आवाज में फिल्म टैक्सी ड्राइवर से एक ऐसा ही पुराना सुंदर गीत आप प्रोग्राम में अब सुनिए।

तुझे दिल ढूंढ रहा है, सन ऑफ इंडिया, हाँ फिल्म का नाम सन ऑफ इंडिया, और गीत के गाने वाले मोहम्मद रफी एंड लता जी, ये उजाला रेडियो है।

क्या गीत है मोहम्मद रफी साहब की आवाज में आप सुने उजाला रेडियो पर। सुनने वालों हाँ क्या कहना चाहता था हम कि आज का तमाम प्रोग्राम कर देता हूँ फिर आपका नाम। आशा जी

आशा जी के साथ मोहम्मद रफ़ी साहब को भी आप सुने फिल्म वक्त से निकाला हुआ गीत, जो पेश की गई है उजाला रेडियो पर, वही स्टेशन जो आपके साथ साथ भी और हजारों लोग सुनते हैं।

0: अमोरे मियो तो वे साय तू क्या गा रही
1: है? अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ
1: जाके। अच्छा

बहुत ही सुंदर गीत। फिल्म का नाम द ग्रेट गैम्बलर। नफरत से है मुझे नफरत, नफरत से है मुझे नफरत, और प्यार से है मुझे प्यार। यह है उजाला रेडियो आपका यार।

हे कोई अब तुम मुझ में समा जाओ, मैं तुझ में समा जाऊं। लता जी से आप सुने फिल्म कर्तव्य का गीत और आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो का प्रोग्राम।

हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ और फिल्म का नाम एक सपेरा एक लुटेरा।

ugyanaz, Szona Csireia. उजाला रेडियो मैं हूँ लॉयड महावीर. हमारी तरफ से आप सभी को एक शुभ सुबह पेश किया जा रहा है. अनहेल खुद मोरखन आज शुक्रवार 12 तारीख जून है और उजाला रेडियो के जरिए अभी थोड़ी देर में हम लाने वाले हैं आप लोग की फरमाइश और फरमाइश पेश किया जाएगा देन हाग के रहने वाला श्रीमान मोहन सूरजवाली के वास्ते 80 साल तख्त से जो कि आज आपका है.

Tussen de Wallen, Hamani Trefstraaf, zo bekoor ik Shubdin Peshkejarahe. Het is vrijdag 12 juni. Bharat Tariq Jun ka program hai, jo aap sun rahe hain. Aur hum aapke saath aaj rahenge kareeban sham 1 baje tak. Lekin sabse pehle hum farmaish pesh karne wale hain. Den Haag ke rehne wala Sriman Mohan Suraj Bali ke waaste 80 saal ka janmdin jo ki aaj hai bhagwan se prarthna kiya ja raha hai. Lambi aayu ke waaste taagat tandurusti ke liye aur ye bhi prarthna hai ki upar wala aapko hamesha khush rakhe. हर एक बीमारी से हर एक मुसीबत से दूर रखे श्रीमान मोहन सूरजबाली ये जन्मदिन बारंबार बधाई हो शुभकामना पेश है हार्दिक से बधाई हो Den Haag के रहने वाला श्रीमान मोहन सूरजबाली का 80 साल का जन्मदिन आज है तख्त सफी आड़ा है इस जन्मदिन की खुशी के मौके पर Den Haag के रहने वाली प्यारी प्यारी धर्म पत्नी श्रीमती ईशाना पराह प्यारा प्यारा पति देव के लिए रोसिता और नादिया सूरजबाली पिता के लिए सिंह और सुधीर मुन्ना सिंह की तरफ से प्यारा प्यारा ससुर के लिए हार्दिक से बधाई और शुभकामना प्यार दुलार के साथ पेश किया जा रहा है

आज शुक्रवार है और वे 12 तारीख जून है। दनाह के रहने वाला श्रीमान मोहन सूरजबाली का 80 साल का जन्मदिन है। तख्त सफेद है। इस जन्मदिन के खुशी के मौके पर धर्म पत्नी ईशाना पराह प्यारा प्यारा पति देव के लिए, रोसिता और नादिया सूरजबाली पिता के लिए, सुधीर मुन्ना सिंह ससुर के लिए हार्दिक से बधाई और शुभकामना प्यार दुलार के साथ फरमाइश के। दनहाक के रहने वाला श्रीमान मोहन सूरजबाली का आज 80 साल का जन्मदिन है। तख्त सफेदा है। जन्मदिन के खुशी के मौके पर धर्म पत्नी श्रीमती ईशाना पराख प्यारा प्यारा पति देव के लिए, रोसिता और नादिया सूरजबाली पिता के लिए, सुधीर मुन्ना सिंह ससुर के लिए बधाई शुभकामना के साथ प्यार दुलार मोहब्बत के साथ पेश करें।

आज शुक्रवार 12 तारीख जून को देन हाग के रहने वाला श्रीमान मोहन सूरजबाली का 80 साल का जन्मदिन है, तख्त सफेद है। इस जन्मदिन के खुशी के मौके पर प्यारी प्यारी लीफ लीफ धर्म पत्नी श्रीमती ईशाना पराह प्यारा प्यारा पति देव के लिए, रोशिता और नादिया सूरजबाली पिता के लिए, सुधीर मुन्ना सिंह ससुर के लिए बधाई शुभकामना प्यार मोहब्बत के साथ फरमाइश के। श्रीमान मोहन सूरजबाली का 80 साल का जन्मदिन आज है। जन्मदिन के खुशी के मौके पर पत्नी श्रीमती ईशाना पराह पति के लिए, रोशिता और नादिया सूरजबाली प्यारा प्यारा पिता के लिए, सुधीर मुन्ना सिंह प्यारा प्यारा ससुर के लिए हार्दिक से बधाई शुभकामना प्यार दुलार मोहब्बत के साथ पेश करें।

Den Haag के रहने वाला श्रीमान मोहन सूरजबाली का 80 साल का जन्मदिन आज है। आज शुक्रवार 12 तारीख जून को और इस खुशी के मौके पर देन हाग से धर्मपत्नी श्रीमती ईशाना पराख, पतिदेव के लिए रोशिता और नादिया सूरजबाली, पिता के लिए सुधीर मुन्ना सिंह, ससुर के लिए हार्दिक से बधाई और शुभकामना के साथ फरमाइश के। देन हाग के रहने वाला श्रीमान मोहन सूरजबाली का 80 साल का जन्मदिन आज है। जन्मदिन के शुभ अवसर पर धर्मपत्नी श्रीमती ईशाना पराख, प्यारा प्यारा लीफ लीफ मान के लिए रोशिता और नादिया सूरजबाली, पिता के लिए सुधीर मुन्ना सिंह, ससुर के लिए हार्दिक से बधाई और शुभकामना, प्यार दुलार मोहब्बत के साथ फरमाइश करें।

आज शुक्रवार और भी 12 तारीख जून है, तो आज बड़ी खुशी का दिन है क्योंकि दनहा के रहने वाला श्रीमान मोहन सूरजमाली का 80 साल का जन्मदिन है। जन्मदिन के शुभ अवसर पर प्यारी प्यारी धर्मपत्नी श्रीमती ईशाना पराह प्यारा प्यारा पति के लिए, रोसिता और नादिया सूरजमाली पिता के लिए, सुधीर मुन्ना सिंह प्यारा प्यारा ससुर के लिए हार्दिक से बधाई शुभकामना के साथ फरमाइश के। उमिरिया कट्टी जाए रे या घट्टी जाए रे, श्रीमान मोहन सूरजमाली 80 साल तख्त सफेद, आज आपका है, आपका जन्म दिवस है 80 साल का। इस खुशी के मौके पर प्यारी प्यारी धर्मपत्नी ईशाना पराख प्यारा प्यारा पति के लिए, रोसिता और नादिया सूरजमाली पिता के लिए, और सुधीर मुन्ना सिंह ससुर के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत बधाई शुभकामना के साथ पेश करें।

देन हाख के रहने वाला श्रीमान मोहन सूरज बालिका 80 साल का जन्मदिन आज है। जन्मदिन के खुशी के मौके पर धर्म पत्नी श्रीमती ईशाना पराख, प्यारा प्यारा पति के लिए रोसिता और नादिया सूरजबाली, पिता के लिए सुधीर मुन्ना सिंह, ससुर के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत बधाई शुभकामना के साथ फरमाइश के श्रीमान मोहन सूरजबाली का 80 साल का जन्मदिन आज है, तख्त सफेद आज है। इस खुशी के मौके पर नीदरलैंड और सूरीनाम के रहने वाले समस्त परिवार सूरजबाली, लीन हेनरिक, ओम प्रसाद और फोनी की तरफ से भाई क्लीन फैमिली पराग, लीन हरिदत्त, इंदिरा, कमला, रोजा, सुनील, सीता और मीला बहनोई के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत बधाई शुभकामना के साथ पेश करें।

हाग के रहने वाला श्रीमान मोहन सूरजबानी का 80 साल का जन्मदिन आज है। खुशी के मौके पर सूरीनाम और नीदरलैंड से परिवार सूरजबानी लीन हेनरिक ओम प्रसाद और वोनी की तरफ से भाई के लिए फैमिली पराग लीन हरिदत्त इंदिरा कमला रोसा सुनील सीता और मीला की तरफ से बहनों के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत बधाइयां शुभकामना के साथ फरमाइश के। श्रीमान मोहन सूरजबानी का आज 80 साल तख्त सफेदाग है। इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर दनाह के रहने वाले पत्नी श्रीमती ईशाना पराग प्यारा प्यारा पति देव के लिए दिलो जान से प्यार मोहब्बत शुभकामना बधाई के साथ फरमाइश कर रहे हैं आपके लिए।

देन हाग के रहने वाला श्रीमान मोहन सूरजबाली का 80 साल का जन्मदिन आज है। जन्मदिन के खुशी के मौके पर प्यारी प्यारी लिव लिव धर्मपत्नी श्रीमती ईशाना पराग प्यारा प्यारा पति के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत बधाई शुभकामना के साथ फरमाइश के। मोहन सूरजबाली का 80 साल का जन्मदिन आज है। जन्मदिन के खुशी के मौके पर पत्नी ईशाना पराग प्यारा प्यारा पति के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत दिल और जान के साथ अर्ज करें।

Den Haag kregen we een Sriman Mohan Surjwalika Assisal. 80ste verjaardag gaat je in Goesje Gemalke per Aapke Pjari Pjari Dharmpadni Ishana Paraag. Pjara Pjara lieve man. Pati Devi Kleberi Pjara Mahabat Kisaat Vermaaiske. श्रीमान मोहन सूरजबाली 80 साल का जन्मदिन जो आज है बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं पेश है भगवान से प्रार्थना किया जा रहा है लंबी आयु के वास्ते ताकत तंदुरुस्ती के लिए और ये भी प्रार्थना है कि आपको हर एक मुसीबत से हर एक बीमारी से दूर रखें उजाला रेडियो का प्रोग्राम जरूर आप सुन रहे हैं बाकी की फरमाइश कमर्शियल ब्रेक के बाद हम जारी करने वाले हैं 11 बजे के उस पार सुन वाला उजाला रेडियो के जरिए फरमाइश देना है स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl 15 aanvragen voor maar €100 op UR Ujala Radio.

यू आर उजाला रेडियो, ये है और उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम में फरमाइश जारी किया जा रहा है। परिवार सूरज बाली के लिए आज जबकि शुक्रवार 12 तारीख जून है, तो vandaag vrijdag 12 juni de jarige is Den Haag के रहने वाला श्रीमान मोहन सूरजबाली का 80 साल का जन्मदिन है, 80वां verjaardag है। इस जन्मदिन के उपलक्ष्य पर बधाइयां शुभकामना पेश किया जा रहा है। भगवान से प्रार्थना है लंबी आयु के वास्ते, ताकत तंदुरुस्ती के लिए, और ये भी प्रार्थना है कि आपको हर एक मुसीबत से, हर एक बीमारी से दूर रखे, आप सदा खुश रहें। श्रीमान मोहन सूरजबाली का 80 साल का जन्मदिन के खुशी के मौके पर प्यारी प्यारी धर्मपत्नी श्रीमती ईशाना पराह प्यारा प्यारा पति के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत दिल और जान के साथ अर्ज करें, फरमाइश करें ये नगमा।

के रहने वाला श्रीमान मोहन सूरजवानी का 80 साल का जन्मदिन आज है, 80 व्यारा है। जन्मदिन के खुशी के मौके पर प्यारी प्यारी धर्मपत्नी ईशाना पराग प्यारा प्यारा पति देव के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ नहमा को फरमाइश के। श्रीमान मोहन सूरजवानी का 80 साल का जन्मदिन आज है और इस जन्मदिन के उपलक्ष्य पर फिर मैं आपकी प्यारी प्यारी लीफ लीफ धर्मपत्नी श्रीमती ईशाना पराग लीफ लीफ मान प्यारा पति देव के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ ये नहमा को फरमाइश की है।

डेन हाग के रहने वाला श्रीमान मोहन सूरजमाली का 80 साल का जन्मदिन आज है। जन्मदिन के खुशी के मौके पर आपके प्यारी प्यारी धर्मपत्नी श्रीमती ईशाना परा प्यारा प्यारा पति के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ नामा को फरमाइश के फिर एक और प्यार मोहब्बत के बयां पेश है आपके वास्ते। श्रीमान मोहन सूरजमाली का 80 साल तख्त सफेद हाश है। खुशी के मौके पर पत्नी श्रीमती ईशाना पराग प्यारा प्यारा पति के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत दिल और जान के साथ बधाई शुभकामना के साथ पेश है।

0: नमक को फरमाइश के। इस बार रोशिता और नादिया सूरजबाली प्यारा प्यारा पिता श्रीमान मोहन सूरजबाली के लिए 80 साल के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर तख्त से फरियादा के उपलक्ष्य पर बड़ी प्यार मोहब्बत बधाई शुभकामना के साथ पेश करें।
1: ईश्वर रब खुदा भगवान के कई रूप हैं, लेकिन एक ऐसा रूप जिसमें सब समाया है वो है पिता। पिता क्या है ये शब्दों में बयां कर नहीं सकता। शायद पिता से बढ़कर इस जहां में कोई हो ही नहीं।

डेन हाग के रहने वाला श्रीमान मोहन सूरजबाली का 80 साल का जन्मदिन आज है। जन्मदिन के खुशी के मौके पर धर्मपत्नी श्रीमती ईशाना पराख प्यारा प्यारा पति के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ

देन हाँ के रहने वाला श्रीमान मोहन सुरजवाली का आज 80 साल का जन्मदिन है। इस जन्मदिन के खुशी के मौके पर लड़कन रोसिता और नादिया सुरजवाली प्यारा प्यारा पिता के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ नहमा को फरमाइश किए। श्रीमान मोहन सुरजवाली का 80 साल का जन्मदिन आज है। जन्मदिन के खुशी के मौके पर रोसिता और नादिया सुरजवाली प्यारा प्यारा पिता के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत बधाई शुभकामना के साथ पेश करें।

देन हाँ के रहने वाला श्रीमान मोहन सूरज बाली का 80 साल का जन्मदिन आज है। जन्मदिन के खुशी के मौके पर रोसीता एंड नादिया सूरज बाली प्यार प्यारा पिता के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत बधाई शुभकामना के साथ दुलार के साथ फरमाइश के श्रीमान मोहन सूरज बाली का 80 साल तख्त सफिया रहा छे। इस खुशी के मौके पर रोसीता एंड नादिया सूरज बाली प्यार प्यारा पिता के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत दुलार के साथ पेश करें।

डेन हाग के रहने वाला श्रीमान मोहन सूरज बालिका 80 साल का जन्मदिन आज है, जन्मदिन के खुशी के मौके पर रोसिता एंड नादिया सूरज बाली प्यारा प्यारा पिता के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ नाहमा को फरमाइश किए प्यार दुलार प्यार ही प्यार के साथ। उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम में आखिरी फरमाइश हम आपको सुनाने को जा रहे हैं। डेन हाग के रहने वाला श्रीमान मोहन सूरज बालिका 80 साल का जन्मदिन आज है, जन्मदिन के खुशी के मौके पर डेन हाग और रोटरडम के रहने वाले जीवन दर्शन अक्षय और अर्शाद नाना के लिए, जीवानो और दामनी नन्नवा ससुर के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत बधाई शुभकामना के साथ पेश करें।

Haag के रहने वाला श्रीमान मोहन सूरजवाली का 80 साल का जन्मदिन आज है, 80वां verjaardag आज है। खुशी के मौके पर Den Haag और Rotterdam के रहने वाले जीवन दर्शन अक्षाया एंड अरशाद नाना के लिए, जिफानो एंड दामिनी ननवा ससुर के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत बधाई शुभकामना के साथ नहमा को फरमाइश के। Den Haag के रहने वाला श्रीमान मोहन सूरजवाली आपके आज 12 तारीख जून को, आज शुक्रवार 12 तारीख जून को 2020 में आपका 80 साल का जन्मदिन है, 80वां verjaardag है। ये जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हार्दिक से बधाई शुभकामना पेश किया जा रहा है समस्त परिवार की तरफ से। समस्त परिवार सूरजवाली, समस्त परिवार पराग की तरफ से बहुत बहुत बधाइयां शुभकामना पेश है। आज आप अपना जन्मदिन धूमधाम के साथ परिवार के साथ जरूर मनाइए। उजाला रेडियो के जरिए जितनी से फरमाइश हमने पेश किए हैं, हम यही आशा कर रहे हैं कि आपको जरूर से पसंद आया हुआ होगा। इक्वेंस द हेल फैमिली सूरजवाली एंड इन बिजोंदर द हेयर मोहन सूरजवाली एंड हेल फैन द मोई से फरियारी मनाइए। उजाला रेडियो के जरिए सुनने वालों फरमाइश देना है, stuur je e-mail naar info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro. Tot straks na 12 uur. Koffie en chai op Ujala Radio. Zerur Sunlina. Koffie,

भैया मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो अभी आपने सुने हैं उजाला रेडियो के जरिए पेश किया गया है। और आज की प्रोग्राम में या दिमान इस दिमान इस ना स्नेल बहुत स्नेल है आज का या सीकर फूड बलवा के कारण से वो आज स्नेल है गया। Maar hij moet even hier settelen, dus zijn microfoon moet hij goed zetten. Zijn koffietje, komt zijn koffie eraan? Oh, oké, ja, ik hoor het al, die koffie komt eraan. Dus aan en toe, raam ze berdja. Or, hamlok bij, bodin ze door in de zaak liggen, want die hebben weer ons een paar dagen

मुंडन संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

जो बहार आने पर याद आती हो। फिल्म तकदीर का गीत मोहम्मद रफी साहब की आवाज। मुझे तुम उजाला रेडियो है ये सुनने वालों। इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए आप हमेशा देखें वेबसाइट पर ujala.nl। अगला गीत जो हम तैयार रखे हैं सुनाने के लिए वो होंगे उदित नारायण जी की आवाज में।

अब तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। उदित नारायण की आवाज में गीत आप सुने, फिल्म डर से निकाला हुआ, उजाला रेडियो, फिल्म आशिकी का गीत आप सुनिए।

0: ये है उजाला रेडियो, रात और दिन, सुबह से लेकर शाम तक, 24 घंटे सिर्फ आपके लिए।
1: हेलो, पापा के जिद के आगे हार गए। शादी हो रही है मेरी, हो सके तो भूल जाना।
2: ऐसे कैसे भूल जाऊं तुम्हें, प्यार छूटा नहीं है।

कितना प्यार है मुझे तुझसे, कैसे बताऊं तुझे। तेरी यादों से जो टीस उठती है दिल में, उसे कैसे दिखाऊं तुझे।

के घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है। उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net।

0: ugyanaz, szona csirejá, csirejá, csirejá, csirejá. Na na nani, dada dadi, kaka kaki, mama mami, phuwa phuppa, behen aur e bhai, to bhi sune hai toh? उजाला रेडियो,
1: उजाला रेडियो पर एक बार फिर आप सभी को स्वागत है और अब शुरू होता है यहीं से यादगार गीतों का सिलसिला।

इतिहास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

उजाला रेडियो पूरा देश में दिया बे प्लस पर हमेशा और हर एक जगह सुनिए, यू आर द नंबर वन हिंदुस्तानी रेडियो स्टेशन।

फिल्म का नाम पूरब और पश्चिम, गीत के गाने वाले लता जी, महेंद्र कपूर और मनहर उदास। सुनने वालों, अब उजाला रेडियो का प्रोग्राम में चलिए, पेश है एक बैठक गाना, हरिदास जय राम।

0: 我讲的错吧？你觉得我？एकवा जन्म में मनुष्य के जन्म पाई लाई मनुष्य रहा इंसान एक दूसरे के धन दौलत हड़प के बस गए मर इस जन्म में देखा गधा बन के भोगे भैया हफीज।
1: अच्छा भैया जयराम तब जब तू मरिए तब तू कौन की हो
0: देख भैया हफीज जो हम भी कोई के धन दौलत हड़प के खाए के मर जा और जो मरब कैसे ही गधा बन के हम भी भोग अपन करनी।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

और तुम कितनी सुंदर हो। फिल्म मोहरा का गीत उजाला रेडियो पर आप सुने। Wilt u ons bellen, dan altijd tijdens kantooruren op het nummer 020 409 0807.

अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करती।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

जी सुन वालों, मैं हूं आमिर जयराम और ये है आपका उजाला रेडियो, वही हिंदी हिट रेडियो स्टेशन जहां प्यार, खुशी और मस्ती मिलता है।

0: बड़ा प्यारा नन्ही मुन्नी क्यों घूम लाया तेरा मुखड़ा प्यारा क्या खोई है गुड़िया तेरी क्या है किसी ने मारा टूट गया क्या तेरा बंदर टूट गया क्या हाथी टूट गया क्या तेरा बंदर टूट गया क्या हाथी नाना क्या फिर तुझसे बिछड़ गया तेरा कोई साथी कौन
1: काबली वाला

ताला, कैद उसी में पड़ा हुआ है तेरा काबले वाला। पर कैसे टूटे ताला, तू मंत्र तुझी निराला। क्या क्या किंग किंग चटबो